0: Welcome back to Radio KJ Local. You're listening to us on Plains FM 96.9.
1: Jalo frequency pe sun rahe hain. That's not a new RJ we have got. That's RJGB just trying to be dramebaz as she always is.
0: Dramebaz kaha hum?
1: I've never heard you talk like that.
0: I'm upskilling myself.
1: Aise baat kar. चलो गाइस आज बहुत ही अच्छा लगा.
0: थिंकिंग ऑफ मिडनाइट शो. डिडंट वी थिंक अबाउट द मिडनाइट शो.
1: लाइक दैट.
0: हे गाइस, डू यू वॉच आरजे नावेद?
1: या
0: आरजे नावेद एंड हिज फनी रील्स. हेलो,
1: कैसे हो? फोन उठाया. हाँ, ये दो दबाइए. दबा दिया. आप दबा रहे हैं तीन? नहीं, दो दबाना.

0: वही शुड डू दैट।
1: ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं बात करते। सुनो, आप अकेले हो।
2: हमने कहा कि किसी दिन अगर हमारे अगेंस्ट में कंप्लेन आएगा तो हम दोनों, अरे भाई जी सिंह साहब जी, आप कहाँ थे अभी तक यार? आपका भी इंतजार रहते हैं, आप इधर, आप हेफोर्ड स्ट्रीट में रहते हैं ना, हम तो इंतजार कर रहे हैं, आप हमें कब बुलाएंगे घर पे खाना खाने के लिए? हम रेडियो फिनिश करके पैदल आ जाएंगे अपने घर पर। पर गाइस, दैट्स इट फॉर अनदर संडे। जितने लोग हमारे साथ फ्रिक्वेंसी पे है, फेसबुक वालों, डोंट गो एनीवेयर, बहुत जल्द हम आपसे बात करेंगे। पर नीरज जी फ्रॉम क्राइस्टचर्च मेंस प्रिजन, द प्रेफर्ड रेडियो स्टेशन, रेडियो केजे लोकल, इनके साथ जितने और लोग कहीं से भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ है। कैसे कैसे मिलते मिलते टाइम निकल जाता है जी, जी पता ही नहीं चलता है, एंड इट्स टाइम फॉर अस टू ऑलमोस्ट गो फ्रॉम हियर।
1: जी बिल्कुल। सो जितने भी लोग हमारे साथ आज फ्रीक्वेंसी पर जुड़ रहे थे, धन्यवाद आपको। और जितने भी लोगों ने कल हरियाली तीज को आकर सपोर्ट किया, आप सबको भी रेडियो केजे लोकल की तरफ से हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि आपने सपोर्ट किया। ऐसे ही क्राइस्टचर्च के सारे इवेंट्स को सपोर्ट करते रहो, एंड मेक श्योर सेप्टेम्बर 5th केरला कल्चरल फोरम के ओणम के टिकट्स डोंट फॉरगेट टू बाय इट।
2: बाकी भी जितने इवेंट्स हैं इनको भी रेडियो केजे विल बी सपोर्टिंग इट, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे क्रिश साइनिंग ऑफ विद अ वेरी ब्यूटीफुल, विद अ वेरी गॉर्जियस
1: RJ Jibby, bye.